अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: listen to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

ना के हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी क्या एक परी थी तोता परी हंसी वो बड़ी थी हाँ हंसी वो बड़ी थी गगन देश था उसका क्या गगन देश था उसका अजब भेष था उसका चले रात आगे सुनो सुनो बात आगे सुनो सुनो सुनो तो अरे अरे सुनो तो हाँ

के तू अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ।

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइकारेडियो.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी
1: Listen back to your favorite shows by logging on to LaikaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Breakfast with Kajal. Laika Radio.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: good morning. स्वागतम, आइए पधारिए और शामिल हो जाइए मनोरंजन की महफिल में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर, लाइका गोल्ड, लाइका रेडियो मिडलैंड और वह विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में पहुंचने वाला आपका अपना ये रेडियो और रेडियो पर मनोरंजन कार्यक्रम लेकर मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज शुक्रवार वर्ष 2026 के अक्टूबर महीने की 2 तारीख विश्व नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस, गांधी जी की जयंती है आज 2 अक्टूबर और एक ऐसा सिद्धांत, एक भाई ऐसा विचार जो पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है उसे याद करते हैं। हालांकि शांति की बजाय भाई हमारे आसपास अशांति ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। संगीत से और भाई हंसी के ठहाकों से, शायरी से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, दिल बहलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है स्वर ईश्वर है, संगीत जीवन है। डमरू, वीणा, झांझर, घुंघरू, मुरली की धुन आज से है। साज हो या आवाज का जादू, मकसद तो संवाद से है, संवाद यानी डायलॉग। किसी ने प्रभु को गाकर पाया, किसी ने नाच के पायो शाम, ये सारी जीवन की लीला ब्रह्म रूप सुरनाद से है।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: Tydzień. Wyt Javi Sharma.
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

0: सबसे निराला मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: From King's Heath to Smethwick, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
3: Rafta rafta ho meri hasti ka sama ho gaye.
4: Aapka naya station Leica Radio Ghazals bahut jald aa raha hai.
2: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
6: Welcome back to the world of music. Sangeet ki aur laut aaiye. अब भाई कुछ लोग इनवाइट करते हैं लेकिन न ठिकाना बताते हैं ना समय जताते हैं भाई कितने बजे कहाँ पहुंचना है. हम पूरा विवरण दे रहे हैं, नोट कर लीजिए. मिलते हैं.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: क्या बात है साहब, एक के बाद एक गीत हैं अनेक, सुनते रहिए.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: दिला दूं आपको भाई, इस गीत के बाद हम आप आज के प्रमुख समाचार सुनाएंगे आपको. लाइका रेडियो नेटवर्क पर सुनिए सुरीली आवाज, सुरीले साज़.

रवि साहब की बनाई धुन पर लता जी की आवाज और इस गीत को भैरव भैयू कितनी भी बार सुने आपको ये गीत हमेशा नया लगेगा।

0: जरूरत है इंसानियत की, मोहब्बत की, जरूरत है अमन चैन की, शांति की। भाई खबरों का समय हो गया है और खबरों की ओर मुड़ते हुए बता दें आपको कि आरएफ बेस की छानबीन के आसपास जो घटना घटी थी उसकी भी छानबीन करते हुए एंटी टेरर पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। एक यूके ईरानियन नेशनल हैज बीन अरेस्टेड ऑन द सस्पिशन ऑफ प्लॉटिंग अ टेरर अटैक फॉलोइंग द इंसिडेंट एट आरएफ फेयरफोर्ड। इसके अलावा भाई जो लोग जो है जेलों में स्थान की जगह की कमी के कारण जल्दी रिहा किए जा रहे हैं, अपराधी रिहा किए जा रहे हैं, अब वो अपना ठिकाना ढूंढ रहे। कई तो मुंह छुपा करके बाहर निकल रहे थे कि वो उनकी पहचान जाहिर ना हो, लेकिन कई लोग वही सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर आके और प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स बोल रहे हैं। पर सबसे ज्यादा चर्चित जो घटना है वो तो वो प्लेन वाली है और चर्चा हो रही है उस भारतीय पायलट की भाई, जिसे हीरो जो है मान रहा है विश्व, अमेरिका से लेकर इसराइल तक और भारत। कुछ लोग हैं जो सिर्फ इसे दो पायलट्स के बीच की लड़ाई मान करके टालने की कोशिश कर रहे हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स, मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: लाइक आ रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। नेतन्याहू का दावा है कि फ्लाइट हमलावर जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के लिए ब्रेन वॉश किए जाने के संकेत है, उसके वो उस तरह का आदमी था। भारत से आने वाली खबरों में नई दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी। एशियन गेम्स में लवलीना बरगोहाई ने चीन के बॉक्सर को हराकर जीता गोल्ड मेडल और एशियन गेम्स में ही महिला रिकॉर्ड में भारत का गोल्ड, दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। लेकिन साहब खेलों की बात करें तो क्रिकेट के बिना तो फिर खेल जो है वो पूर्ण नहीं लगते हैं और क्रिकेट आज का जो मुकाबला है वो आज है कि कल खेला जाएगा, लेट मी सी। और मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट का मुकाबला एक तो एशियन गेम्स में जो है वो मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का, बट दैट विल बी टुमारो, सुबह 6 बजे से मैच है। इसके लिए भाई लोग इंतजार करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला। और इसके अलावा भाई एक और मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, ये दूसरी टीम जो भारत की खेलेगी, ये मैच भी कल होगा सुबह 9:30 बजे। क्रिकेट से भी हम आपको जोड़े रखेंगे। लौटाइए अब समाचारों में जो खेल आ रहे हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद लवलीना ने बताया कि मैंने तो संन्यास ले लेने का फैसला कर लिया था, 2024 ओलंपिक के बाद मुक्केबाजी से वो रिटायर्ड होना चाहती थी, लेकिन पेरिस खेलों में मेडल नहीं जीत पाने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, जो सही साबित हुआ। अब उन्होंने भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने अपना पहला एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीत लिया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाने की खबरों का खंडन किया है। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर मायावती को एड्रेस करते हुए लिखा है कि आप मेरी पॉलिटिकल गुरु हैं, मेरी इंस्पायरेशन हैं, आप मेरी बुआ भी हैं और माँ भी हैं। राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा है, मैं आपके मार्गदर्शन में हमेशा रहूंगा और कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। भारत से आने वाली खबरों में जंतर मंतर पहुंचने से पहले सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली में काफी जो है पुलिस व्यवस्था की गई। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जिन नेताओं को अरेस्ट किया है उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विपक्ष की नेता आतिशी भी शामिल है। हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोदी जी सवालों से मत डरिए, बाहर आइए और देश को जवाब दीजिए। इंटरनेशनल खबरों में मदीना पर हमले के दावे के बाद पाकिस्तान और कतर के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। यमन की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार की हिमायत करने वाले फौजी गठबंधन ने हुती विद्रोहियों पर मदीना में एक बिजली सप्लाई स्टेशन पर ड्रोन हमला करने का इल्जाम लगाया है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की लीडरशिप वाले गठबंधन के स्पोक्स पर्सन मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 29 सितंबर 2026 को सुबह 5:11 पर मदीना में एक बिजली सप्लाई स्टेशन पर अटैक किया गया। गठबंधन का कहना कि घटना की जांच और इस्तेमाल किए गए ड्रोन के मलबे के आकलन के बाद ये नतीजा या वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। डीजल की कमी के बीच ट्रंप ने सप्लाई रोकने के संकेत दिए, एक्सपोर्ट बंद करने के तरफ उन्होंने इशारा किया है। ओलिवर स्मिथ, सीनियर बिजनेस प्रोड्यूसर सिमोन जैक, बिजनेस एडिटर आर्ची मिशेल और कई लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूरोपियन कंट्रीज से उनके डीजल भंडार का कुछ हिस्सा जारी करने के लिए कहेंगे। ट्रंप डीजल की कमी के बीच अमेरिका से इसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने का विचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर के कुछ और खबरें आ रही हैं। दिल्ली के 11 मेट्रो स्टेशंस पर एंट्री और एग्जिट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर मुजाहिरे के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो के कई स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि कई स्टेशन जो आज बंद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जो है जोरदार तैयारी चल रही है। उसी इलाके में धारा 163 लगाई गई है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस को लगता है कि उसके बाल्टिक क्षेत्र में स्थित कैलिनिनग्राद पर सीधे अटैक हुआ है तो वो अपने पास मौजूद सभी हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उनका इशारा शायद न्यूक्लियर हथियारों की ओर भी था। पुतिन ने जोर देकर कहा कि रूस किसी को धमकी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के नेताओं के उन बयानों का जवाब दे रहा है जिनमें कहा गया है कि रूस 2029 या 2030 तक युद्ध की तैयारी कर रहा है। इस पूरे सप्ताह रूस ने नेटो पर अपने इलाके की नाकाबंदी की तैयारी करने का आरोप लगाया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है Like a Radio Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Disha, supreme extra long grain basmati rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
0: Celebrate Diwali with Chalo Let's Go and Chai Chopal. Diwali Gala 2026.
2: Saturday 31st October at the Conference Suite West Bromwich. Enjoy a vegetarian feast, live entertainment and family fun.
0: Adults £30. Children aged 5 to 12 just £15. And under 5s go free.
2: Book now at diwaligala2026.eventbrite.co.uk. For sponsorship, call Rakesh on 07436 594 323.
0: Sponsored by Terence Duffy and Diamond Heaven. Radio partner Leica Radio.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
5: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
6: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 एम टू 1 पीएम ऑन Leica Gold रेडियो, Leica रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Leica रेडियो मिडलैंड्स पर.
7: आज बहुत लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं भाई, हम चिंतन में जिक्र करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के से कोई प्रसंग, क्योंकि आज उनकी जयंती है. पर आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है. पर भाई हमारे फिल्मी प्रेमी और संगीत प्रेमी श्रोता याद दिला रहे हैं कि देखिए साहब, भूलिएगा नहीं, आज आशा पारेख का भी जन्मदिन है. आज ही के दिन जन्मी थी आशा पारेख. बंगलोर में जन्मी थी 1942 में. और आशा जी भाई, हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं. बड़ी प्रतिष्ठित अभिनेत्री. और अरे मैंने बता दी उनकी उम्र, ये तो गलत किया. सॉरी आशा जी, मैंने सिर्फ ये बताया कि आप कौन से साल में जन्मी थी, मैंने आपकी उम्र नहीं बताई है. जब कभी आप छोटे पर्दे पर या किसी कार्यक्रम में नज़र आती हैं, बड़ी ग्रेसफुली होती हैं. और उम्र का क्या है, वो तो एक संख्या है, छुपा लेते हैं.

वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और बहनों भाइयों, ये प्रोग्राम लेकर दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। ये समय चिंतन का है, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और भाई ये चिंतन जो है ये ब्रिटेन की सीमाओं को लांग कर ईस्ट में वेस्ट में दूर दूर तक देशों में सुना जाता है, और जब हमें रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आज के चिंतन के लिए आलेख हमें एक बार फिर से भारत में प्रयागराज तीर्थ से प्राप्त हुआ है, भेजा है पंडित प्रहलाद नारायण व्यास जी ने, प्रहलाद नारायण व्यास शुक्ला जी। भाई आप चिंतन के प्रेमी हैं और याद दिला रहे हैं कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। भारत में तो लोग मना ही रहे हैं, लेकिन भारतवंशी जहां जहां हैं और अहिंसा प्रेमी जहां हैं, दीन दुखियों से प्रेम करने वाले, जरूरतमंदों की मदद करने वाले, निस्वार्थ भाव से अहिंसा पूर्वक, हिंसा भाई चाहे वो शरीर की ही नहीं होती है, मारपीट खून खराबा वो तो हिंसा है ही, लेकिन आप वाणी से भी अगर किसी को दुख पहुंचाते हैं कड़वा बोलकर, वो भी हिंसा है। न मन से, न वचन से, न तन से किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करने वाला व्यक्ति गांधीवादी हो सकता है। गांधी जी की जयंती के साथ साथ आज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। वो छोटे कद के धोती वाले लाल, क्योंकि धोती पहनते थे। भाई शास्त्री जी के बारे में अनेक बातें हैं, हम फिर भी कभी प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गांधी जी का तो जीवन चरित्र पूरा जो है चिंतन प्रदान करता है। लेकिन आज व्यास जी ने घटना लिख के भेजी, ये गांधी जी के भीतर एक गुण ऐसा था जो अहिंसा को, सद्भावना को, प्यार को वो प्रचारित करता है, और आज उसी की जरूरत है। कहते हैं मैं तो मानस पाठ करता हूं, यानी यहां प्रयागराज में, प्रयागराज बता दें आपको भाई, जो इलाहाबाद नाम था जिस शहर का, उसका असली नाम, शास्त्रीय नाम प्रयागराज था। वहां से ये भिजवाते हैं चिंतन, और व्यास जी प्रहलाद नारायण शुक्ला जी लिखते हैं कि गांधी जी दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते थे, और संत का यही स्वभाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, जो दूसरे के दुख के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, उसे सहन करे, वो संत है। पर दुख हेत असंत अभागी, आज खबरों में सुनकर के गर्व होता है कि एक भारतीय पायलट ने दूसरों को बचाने के लिए उस खून खराबे के बीच जख्मी होकर के, बेहोश होकर के, वो भाई उन्होंने दरवाजा खोला, मदद को अंदर आने दिया, और आतंकवादी को पायलट को लोगों ने दबोच लिया, वरना एक और 9/11 जैसा हादसा होने जा रहा था, ऐसा मानते हैं सब। दूसरों का दुख जो महसूस करे वो संत है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी काम करता हो, वो गांधीवादी है, वो अहिंसक है, वो लाल बहादुर शास्त्री का फॉलोवर है। एक बालक को किसी अपराध में थोड़ी सी सजा हुई थी, जेल की सजा हुई थी, पर बच्चा चिंतन किसी तरह से भी जेल से भाग निकला। अब भाग तो निकला, लेकिन जाए कहां, पुलिस उसके पीछे थी। बहुत बड़ा गंभीर अपराध नहीं किया था उसने, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था, उम्र छोटी थी, इधर उधर भटक रहा था। अब उस जमाने में पुलिस ने उसके ऊपर 50 रुपए का इनाम भी रखा, तो बहुत छुपा छुपा रहता था, भूख से बुरा हाल था। एक दिन उसका खाना नहीं मिला था 2 दिन से। उसने समीप के गांव में जाकर के एक झोपड़ी पर दस्तक दी, और झोपड़ी में
एक गरीब किसान परिवार रहता था उससे खाना मांगा। किसान ने कहा, भैया काश हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ होता, खाना नहीं है। खाना क्या, अनाज भी नहीं है, इस साल तो हम लगान भी नहीं चुका सके हैं। मालूम होता है दो चार दिनों में ये जरा सी जमीन और झोपड़ी भी कुर्क हो जाएगी, फिर क्या होगा ईश्वर जाने। किसान की हालत देखकर बालक अपनी भूख तो भूल गया और उसे इतनी दया आई, उसकी आंखें सजल हो गई और कहने लगा, देखो मैं जेल से भागा हुआ कैदी हूं और मुझ पर 50 रुपए का इनाम है। तुम ऐसा करो, मुझे पकड़कर पुलिस को सौंप दो, तुम्हें 50 रुपए इनाम में मिल जाएंगे। बताओ तो तुम्हें लगान के लिए कितने रुपए चाहिए। किसान ने कहा, वो तो सिर्फ 40 रुपए चाहिए। अरे तो तुम 40 रुपए से लगान भी चुका देना, 10 रुपए में कुछ और भोजन का इंतजाम कर लेना, पर प्लीज मुझे गिरफ्तार करवा के तुम ये इनाम ले लो, जल्दी करो। किसान ने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु लड़के ने बार बार मिन्नत की, प्लीज मैं बहुत दुखी हो गया हूं आपकी बात सुनकर, आपकी हालत देखकर, मुझे मेरे हाथों को रस्सी बांध दो और मुझे बांध के लेकर चलो थाने में। किसान ने बड़े दुखी मन से उस बालक का कहना माना, थाने में ले गया और वहां 50 रुपए का इनाम उसे मिल गया। अभियोग में मुकदमा चला, गवाह के लिए किसान को बुलाया गया। इस कैदी को तुमने कैसे पकड़ा, ये सवाल पूछा गया कोर्ट में। तो किसान ने कहा, मालिक आपको हैरानी होगी, मैंने इसे नहीं पकड़ा, इसने अपने आप को खुद पकड़वाया है। हमारी हालत देखकर इसका दिल भर आया, यह खुद भूखा था लेकिन इसने अपने आप को गिरफ्तार करवा के हमारे हाथों हमें इनाम दिलवाया। हाकिम को बालक की दया के बारे में सुनकर के बड़ी खुशी हुई, ये तो अपराधी लगता ही नहीं, छुटपुट अपराध के लिए, छोटे कसूर के लिए, वो भी स्कूल में उससे हुआ था, उस बालक को जेल में लाया गया था। पर जेल तोड़कर भागना अपराध था, पर बच्चे ने सोचा था आजादी मिल जाएगी और उसे मिली भूख, उसे मिला पुलिस का भाई डर खौफ। और बच्चे का जब इतिहास जाना गया, उसकी बैकग्राउंड, तो भाई वो अपराध प्रवृत्ति का था ही नहीं। अब हाकिम ने खुद सरकार से ये गुजारिश की, प्रार्थना की कि इस बच्चे को क्षमा कर दिया जाए। किसान को इनाम भी मिल गया और बच्चे को रिहाई भी। पर अब बाकी सबको यह संदेश मिला, जो व्यक्ति दूसरे का दर्द महसूस करता है, अपनी भूख को भूला कर किसी और का पेट भरता है, जो अपनी चोट को, अपने दर्द को इग्नोर करके दूसरों का दर्द बांटता है, वही सच्चा संत है।

ऐसे बहुत सारे किस्से भाई हमारे आसपास घटते हैं, घटनाएं घटती हैं, जो बताते हैं कि किसी दूसरे का दर्द महसूस करना ही सच्चा धर्म है। हमारे बैसन साहब कह रहे हैं, करुणा सच्चा धर्म है, जो हमारे मन को शांति और दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। दया धर्म का मूल है। अगर आपके हृदय में दया है, अगर आप किसी दूसरे का दुख अनुभव कर सकते हैं, हमारे प्रहलाद नारायण शुक्ला व्यास जी आज का चिंतन भिजवा रहे हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं, मानस से प्रेरणा मिली है, संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। जो दूसरे को दुख पहुंचाए वो असंत है, जो दूसरे का दुख बांट ले, दर्द को बांटने की कोशिश करे वो संत है। आज के चिंतन के साथ जो आपने भजन सुना, गांधी जी का प्रिय भजन माना जाता है, संभवतः नरसिंह मेहता जी की रचना है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। दुनिया में बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पर कहते हैं भाई धार्मिक व्यक्ति तो वही है जो दूसरे के दर्द को महसूस करता है। बहुत सारे लोगों ने भाई भारत से भी हमें संदेश मिल रहे हैं, क्योंकि आज का तो चिंतन भी भारत से आया है। परिमल मेहता, संभवतः कहां से आपने लिखा है, लेकिन भारत का नंबर है आपका, भारत से आपका संदेश आया है। थैंक यू वेरी मच, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप ऑन इंडियन फोन बट लिविंग इन यूएस, ऐसे अमेरिका में रहते हैं, मैं भारत का नंबर जरूर इस्तेमाल कर रहा हूँ फोन। भाई परिमल मेहता जी, थैंक यू वेरी मच। औरों को भी जोड़िए हमारे साथ, राजेंद्र राज, स्वीटी कालड़ा, हमारी वत्सला जी कहती वैष्णव जन तो तेने कहिए, ब्यूटीफुल भजन, पर डोंट फॉरगेट जय किसान, जय जवान जय किसान नहीं भूलेंगे, सुनाएंगे आपको भाई। जय जवान जय किसान क्या है, एक ऐसा स्लोगन, एक ऐसा नारा जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। समय की नब्ज को पहचान कर नेताओं ने जो बिहेव किया, जो वर्ताव किया, पूरी भाई कौम के लिए एक वो एग्जाम्पल बन गया, प्रेरणा बन गया। रानी ऑफ स्लोर, थैंक यू। जगदीश जी बुशी में, निर्मला जी, नीला चौधरी जी, अरुणा और भूपेंद्र पटेल, बीना पारेख जी, जैस्मीन जी, सहर अरुणा और नैना शाह, भरत गंगाराम, हितेश पटेल गुजरात वडोदरा थी, केम छो तमे भाई सारू, अर्जुन जी, हिमांशु पटेल, मानसी, इमरान, इमरान भाई आप कहां से, फूलों का गुलदस्ता भेजा आपने, चित्र भेजा जी, अच्छा लग रहा है, थैंक यू। राजकुमार जी आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, हेतल सोलंकी और चियांग जी, विजय बहनों भाइयों याद दिलाते हुए कि आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती और साथ में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती, तो आज का चिंतन समेटते हैं। शुभकामनाएं अहिंसा प्रेमियों के लिए, वो अपने निश्चय पर डटे, गांधी जी को इस क्षेत्र में फॉलो करें भाई, अहिंसा परम धर्म। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है। धन्यवाद प्रहलाद नारायण व्यास शुक्ला जी, प्रयागराज में बहुत सारे लोगों की दुआएं आप तक पहुंच रही हैं।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: SBI UK यानी State Bank of India UK. भाई अगर आप भारत पैसे भिजवाना चाहते हैं तो उनकी तरफ से आज का रेट हम बताते हैं. They are giving 126.5 rupees. भारतीय मुद्रा में 126 रुपए 50 पैसे का रेट वो दे रहे हैं. यू कैन ट्रांसफर बाय अ ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप. एक पाउंड का रेट 126 रुपए 50 पैसे. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई.
2: ये है लाइका रेडियो.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. From Dudley to Aston. Laika Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Laika Radio Midlands. On this week's Laika Extra podcast, Ruby Raza discusses foster care among South Asians.
1: If I was speaking to foster carers, I would say that you don't need to be perfect. You need to be present. You need to have the empathy to start and do the caring of foster carers are regarded as professionals. If you think you can, you can.
2: Yeah, true.
1: Just try it.
2: There's a will, there's a way.
0: Laika Extra is here. Search for our podcast, Laika Extra, on all major streaming platforms.
3: Laika Radio.
0: Let's return to the biggest hits back to back. This is Laika Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Laika Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
4: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
5: Aur sahab, ye jo track hai na, ये याद दिलाता है जो सवाल पूछा हमारे श्रोताओं ने कि जय जवान जय किसान क्या हुआ अभिप्राय उसका किसका दिया हुआ ये नारा था तो आपको बता दें कि सन 62 में चीन के हाथों बुरी तरह से प्रताड़ित होने के बाद हारने के बाद भारत जो है तैयार नहीं था युद्ध के लिए शांति की बातें चलती थी पंचशील का सिद्धांत भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जो है पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे शांति दूत कहलाने लगे थे लेकिन शांति दूत को ऐसा झटका मिला कि भाई वो सन 62 में भारत की फौज भारत के नेता भारतीय लोग उस जंग के लिए तैयार नहीं थे इसलिए चीन के हाथों करारी हार मिली उसके बाद भारत के दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान ने सोचा कि जो चीन से हार सकता है चीन उसे हरा सकता हम भी हरा सकते हैं और सब क्या हुआ कि सन 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई अब लगा कि कोई अनुभवी नेता नहीं है भारत के पास और उसकी फौजी तैयारी भी वैसी नहीं है 62 में वो हार चुके हैं ये नहीं पता था कि उस हार के बाद बहुत सबक सीखे भारत ने जंग हुई 1965 में और उस युद्ध का नतीजा पूरी दुनिया जानती है और उसके बाद जब शांति स्थापित हुई तो भारत के नेता लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फौजी डिक्टेटर भैया अय्यूब खान जो है मिले ताशकंद में ये रशिया में उस समय के सोवियत संघ में बातचीत हुई और युद्ध थम गया जो फैसले हुए उसके बाद शास्त्री जी की हृदय गति रुक जाने से कहते हैं हालांकि अभी उस पर भी बहुत बहस है डेथ हो गई पर डेथ से पहले जैसे वह कौम को जिंदा कर गए वो पूरे देश को जगा गए उन दिनों अनाज की भी कमी थी देश में और भाई धन की भी कमी थी लेकिन देश के लोगों में जो जागृति आई जो जज्बा जगाया शास्त्री जी ने वो यादगार बन गया भारत एक सशक्त देश बन गया उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और उसी ने देश जगा दिया 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती है तो शास्त्री जयंती भी है आज उन्हें भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं स्मरण करते हैं

0: Jejavan Jai Kisan.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Goga Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: It's nice, just have it.
0: और भाई मैसेज आया है भास्कर जी का. भास्कर जी कहते हैं रोज आपका कार्यक्रम सुनता हूँ. नंबर आपका केनिया का है. भाई वहाँ भी लोगों को हमारे साथ जुड़िएगा. कहते हैं मुझे आपकी रेडियो के बारे में जानकारी किन्होंने दी? भरत गंगाराम जी ने. भरत जी थैंक यू वेरी मच. बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप ये. और बहन भाइयों उन्होंने भी एक गीत सुझाया है. हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है कि जहाँ लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान और गांधी जी का स्लोगन नारा संदेश दुश्मन से भी प्यार करो नजर

0: भाई ऐसे ऐसे गीत सुन के लगता है जैसे कि हम रेडियो भी सुन रहे हैं और कोई सत्संग सुन रहे हैं, कोई सात्विक प्रवचन सुन रहे हैं भाई, जीवन पर प्रभाव डालने वाले संदेश हैं।
1: This is Leica Radio. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Leica Radio Network पर ये है Leica Gold Radio, गोल्डन गीतों का खजाना. Leica Radio Midlands.

0: बैक टू वेस्ट संगीत में दो गीत आपने सुने भाई, और ये दोनों गीत मैं दो बच्चियों के नाम करना चाहता हूँ, नाम ही नहीं याद आ रहे हैं। और ट्रेन में बैठे बैठे बातें चली तो भाई क्या करती हैं अब, तो बहुत छोटी बच्चियाँ, स्कूल की बच्चियाँ, अपनी टीचर के साथ जा रही थी और ट्रेन में मिले थे मुझे कल, दोनों प्यारी बच्चियों का चेहरा जो है ना वो अंकित हो गया अंकल के दिल पर। और बेटियों, एक तो एक का नाम तो शायद था मनरीत, हाँ, और दूसरी का नाम गुजराती दीकरी, तमरा नाम भूल ही गया छो, बुढ़ो थी गया छो हमें। लेकिन बिटिया, आप दोनों ने क्या इंप्रेशन छोड़ा जब वो गुजराती दीकरी ने कहा कि ऑटोग्राफ दे दो? मैंने कहा भी इतनी छोटी बच्ची, उसने जब पूछा क्या काम करते, रेडियो करता हूँ भाई, शो का ऑटोग्राफ दे दो। अब साहब ऑटोग्राफ, मैं मेरे पास तो पेन नहीं है, ऑटोग्राफ कहाँ से दूँ? तभी भाई वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे, मैं एक अंग्रेज लेडी सुन रही थी, दूर सुन रही, थोड़ी सी दूरी पे सीट पे बैठी, फट पेन लेके आ गई, हाँ इन बच्चों को ऑटोग्राफ दो, गिव देम ऑटोग्राफ। उसके बाद भाई मैंने कहा पेन तो आ गया, पेपर नहीं है। और इतनी देर में एक लेडी दो बढ़िया खूबसूरत पेपर्स जो है सख्त वाले वो कागज़ लेके आ गई, इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी की मेक देम हैप्पी। और भाई मैं था नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी महसूस किया मैंने, हमेशा मुझे सेलिब्रिटी लोग बना देते हैं, आते जाते मिलते जुलते घूमते फिरते, एंड आई रियली फेल्ट सेलिब्रिटी एट दैट। तो भाई दोनों बच्ची और उनकी टीचर स्कूल की, साउथ हॉल में एलएनबी प्राइमरी स्कूल है एलएनबी रोड पर, तो वहाँ से वो भाई मिले थे मुझे और उन्होंने इनवाइट किया उनकी टीचर को, उन बच्चों को, सबको भाई बहुत बहुत प्यार, बहुत सारे आशीर्वाद, टीचर को आशीर्वाद नहीं, बच्चों को आशीर्वाद। थैंक यू वेरी वेरी मच भाई। क्या कहते हैं, चलते चलते यूँ ही कोई मिल गया था, सरे रहा चलते चलते, ऐसे ही मुलाकात होती है। और भाई फिर बहुत सारे लोग मिले हैं ज़िंदगी में, बहुत पीछे भी मैं कई बार जाता हूँ तो मुझे उन दिनों की भी याद आती है जब मैं बहुत छोटा था, कोई कोई मुलाकात अंकित हो जाती, लिखी जाती है दिल पर, वहाँ तक याददाश्त का भाई घोड़ा जो है वो कई बार पहुँच नहीं पाता है, लेकिन कई बार जो है जाके लौट आता है वहां से, तो बहुत सारी बातें याद, उनमें ये भी एक बात और शामिल हो जाएगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. They say that send the money to India, your people, your friends, your family members. By the rate is good today. And how much they are giving for £1? 126.5 Indian rupees. 126 rupees aur 50 paise. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Make your celebration special with Falcon Festive offers.
3: Annapurna Chakki Atta, 10 kilos plus Foco Coconut Water, 1 litre, just £7.99. Master Chow Hakka Noodles, 140 grams, 5 for £1. Hira Mango Pulp, 850 grams, 2 for £2.79. Suhana Pickles, buy one, get one free. 1 kilo at £2.99 or 400 grams at £1.49. Dawat Extra Long Basmati Rice, 10 kilos, £15.99.
2: Aur shopping ke saath paye Star Tours ke holiday packages aur Malabar Gold and Diamonds ki taraf se gold coins jeetne ka mauka. Falcon Cash and Carry. Visit 82A Syston Street, Leicester. LE12JU. 2A Rowlett's Hill, Leicester. LE54UN. Or Falcon Supermarket. 135 Carlton Road, Nottingham. NG32FN. Happy Diwali!
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
6: Danu 11, 11. Danu Properties. 11
5: Janan, Janan. For
7: For 15 years, Gennaan has been part of your story. Across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations and new beginnings. Because style has no age, no background and no boundaries. 15 years of Gennaan. For you, for us and for everyone. The Gennaan and J. Anniversary Sale, up to 70% off, is now on. Visit our stores nationwide, including London, or shop the sale online at Gennaan.com and JunaidJamshed.co.uk.
8: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, like

0: 333 or visit mantraholidays.co.uk.
1: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
2: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
3: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
4: By Artist of the Week, who is it? Who is this word? हैं भाई, लेकिन पहले हम बता दें हरीश सालवे का आज जन्मदिन है। कौन है हरीश सालवे? हरीश सालवे साहब टॉप के वकील हैं, वर्ल्ड में जाने माने, और भारत की ओर से भारत का पक्ष रखते हैं, बड़ी जोरदार आवाज में, और कामयाब होते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स में या यहाँ यूके में, अमेरिका में। भाई इन्होंने बहुत सारे केस लड़े हैं कामयाबी पूर्वक, और मजे की बात यह है कि भारत सरकार के कुछ केसेस में इन्होंने फीस नहीं ली है। जैसे मैंने ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शो की फीस, यू नो हाउ मच दैट वाज, £1। रिटर्न है कॉन्ट्रैक्ट में £1। लेकिन ये हरीश सालवे ने भी एक केस लड़ने की फीस ₹1 ली थी। और भाई इनका आज जन्मदिन है, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू हरीश जी। इसके अलावा आज जन्मदिन आशा जी मना रही, आशा पारेख, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम। के मैनन केरला के एक एक्टर हैं, हिंदी अच्छी बोलते हैं और कई बार विलेन या कई बार सहायक अभिनेता के रूप में ये नज़र आते हैं फिल्मों में। और आज ही रचिता राम, ये इंडियन एक्ट्रेस हैं कर्नाटक की, तो इनका भी जन्मदिन है। ये जन्मी थी 1992 में। हिना खान श्रीनगर की ये लड़की है और ये भी एक्ट्रेस हैं भारतीय सिनेमा में, 1987 में श्रीनगर में जन्मी थी। और भाई ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि शास्त्री जी और गांधी जी की आज जयंती है, तो उनके भी जन्मदिन है। शास्त्री जी जन्मे थे 1904 में और गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 यानी 1869 में पोरबंदर में। आपके घर परिवार में अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इनका जन्मदिन नहीं है लेकिन ये इस सप्ताह के कलाकार हैं जिनका नाम है कैफी आज़मी। तमन्ना यही है कि आपकी शायरी को हम चाहेंगे, सराहेंगे, पढ़ेंगे। तमन्ना यही है।

0: बेताब दिल की तमन्ना यही है कैफी आजमी साहब की वही शायरी उनकी उनका लिखा गीत भाई गीतकारों के लिए एक प्रॉब्लम जो कैफी आजमी साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की थी और बाद में उन्हें अपने जो है दूसरे शायर भी दोहराते रहे वो कहते हैं कि फिल्मी दुनिया में अजीब चलन है पहले वो धुन बना लेते फिर कहते हैं इनपे शब्द बिठाओ यानी गीत लिखा हुआ होगा उसको संगीत बद नहीं करेंगे संगीत बना हुआ होगा उस पर शब्द बांधिए कहती ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भाई वो कहते हैं कफन हमने सील के रखा हुआ है कोई मुर्दा ढूंढ के लाओ साइज का कैफी अभी आजमी साहब ने कहा था कहते इसीलिए भाई पहले वो कफन तैयार कर लेते हैं फिर हम मुर्दा ढूंढ के लाते मुर्दा उनके लिए तैयार करते हैं और यही कारण है कि कभी मुर्दे की टांगे बाहर रह जाती हैं कभी उसके हाथ बाहर रह जाते हैं कभी ओवर कवर हो जाता है क्या बात है कैफी आजमी साहब इस सप्ताह के गीतकार इस सप्ताह के आर्टिस्ट रहे और बहुत सारी उनकी रचनाएं आपने सुनी भाई और मुझे यकीन है कि सराही भी होंगी आइए आगे बढ़ते हैं अगले सप्ताह देखते हैं कौन होंगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक पर कैफी साहब की और रचनाएं अभी दो दिन और सुनने को मिलेंगी
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स विजिट dairyvalley.net
0: कभी आपका चालान हुआ है गाड़ी चलाते हुए या मोटरसाइकिल चलाते हुए अरे हम अपनी औकात की बात करें साइकिल चलाते हुए चालान हुआ कभी भाई एक बार पुलिस वाले ने पीछे से आवाज़ दी रात का वक्त था रोको रोको रोको अपुन ने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी कहता रोको रोको हमने नहीं रोका भाग के पकड़ लिया भाई उन्होंने पीछे से कैरियर पकड़ के साइकिल रोक दी कहता है कहाँ भागे जा रहे हो मैंने गीत गा करके जवाब दिया मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो तो उसने मैं छुड़ा करके भागा तो फिर पीछे फिर भागा पुलिस वाला वो उसके उनके पास एक बिसल होती है सीटी बजाते हुए तो मैंने फिर गा के कहा कि जिसकी आवाज़

0: लो।
1: कहता कैसी आवाज नाती है, साइकिल में लाइट नहीं है, रात को चला रहे हो है? हमारा जवाब था, रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया हमने। मैं परेशान हूं, कहते अंदर चलो।

0: कोई कोई बुजुर्ग महिला बड़ी बहस करती है भाई। उनकी गाड़ी रोकी तो बेटा गाड़ी चला रहा था, बेटे को बात ही ना करने दे, कहती मैं बात करती हूँ। कहती बेटा चालान करना जरूरी। कहता माता जी चालान तो करना पड़ेगा, गाड़ी में ना लाइट है ना हॉर्न काम कर रहा है ना टायर ठीक है। कहती फिर ठीक ठीक पैसे लगा ले, कितने पैसे देने? उसने कहा कि चालान होगा कम से कम भी 2,000 रुपए का। कहती देखो ठीक ठीक पैसे लगा ले, ऐसा कर बेटा इसको 200 रुपए दे दे। माताजी 2,000 रुपए कम से कम लगेंगे, चालान की फीस इतनी होती है। क्या बात करता है, देख बेटा मैं तो हमेशा ही ना इधर से गुजरती हूँ और हमेशा तुमसे ही चालान, मेरी सारी फैमिली तुमसे ही चालान कटवाती है। मैं तो अपनी जिठानी को भी कहूंगी कि ये भाई है ना पुलिस वाला, ये बहुत अच्छे चालान काटता है बहुत कम फीस में, तो इसलिए कर चल दो इसको 250 रुपए दे दे। ऐसा करती है महिलाएं भाई, भाव ताव करने में इनका जवाब नहीं है। कहते ठीक ठीक लगा ले, मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती है। जैसे तुम जो मांगे पैसे, इतने कौन देगा इतने पैसे। और भाई एक वो टैक्सी में बैठ के आई ना इलफोड़ से माई, हाँ तो कहता पूछी कितने पैसे? कहता माता जी 50 पाउंड बन देने। 50 पाउंड मैं नहीं देने 50 पाउंड, एले 25 फड़। कहता एकदम आधे 25 पाउंड, हाँ 25 पाउंड तू नहीं बैठ के आया, तेरे भी तो 25 पाउंड हो गया ना, था 50 पाउंड 25 तेरे 25 मेरे।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और साहब कुछ एक सूचनाएं शायद आ गई हैं सामने स्क्रीन पर, आपके साथ साझी करें भाई। इनमें से एक तो ये है, क्या है ये है पढ़ लो। अच्छा मैं बता देता हूँ भाई, सूचना ये है कि क्रेजी फॉर किशोर ये शो हो रहा है दिवाली स्पेशल फीचरिंग द मोस्ट मेलोडियस ट्रैक ऑफ किशोर कुमार एट्रीब्यूट राइट विद द 515 लाइव बैंड ऑन फ्राइडे 6 नवंबर एट द प्रिंस रीजेंट होटल। टिकट्स एट eventbrite.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स ऑफ कोर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। और इसके अलावा भाई एक और शो की बात करें, और वो शो है अपने बहुत ही प्यारे और न्यारे कॉमेडियन सिटी ना मार यार, कितनी बार मना किया था। हाँ तो वो शो है वो अपना सुनील ग्रोवर लाइव, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th October एंड लेस्टर एट मेट्योली अरीना ऑन सैटरडे 31st October। टिकट सेट AXS इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ कोर्स लाइका रेडियो।
1: ये है लाइका रेडियो, बैक टू बैक हिट्स अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क। हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
0: ये भी एक सूचना आपको याद दिलाने के लिए, साउथ हॉल ट्रैवल इज अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सिलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर 3 नाइट्स। ये कार्यक्रम है, ट्रैवल बाय 10th of December। कॉल साउथ हॉल ट्रैवल ऑन 02088434444 or visit southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
3: This Diwali, let your celebrations shine brighter.
4: Looking for amazing Diwali offers? Then there's only one place to shop.
3: Falcon Cash and Carry. From your favorite groceries and fresh produce to Diwali sweets, snacks, drinks and festive essentials.
4: We've got everything you need to make your Diwali truly special.
3: And wait, the Diwali mega offers are here.
4: Bigger savings, amazing prices and fantastic value all under one roof. So don't miss out. Bring your family, fill your trolley and get ready to celebrate Diwali in style. style.
3: Falcon Cash and Carry, your one-stop shop for Diwali. Visit Falcon Cash and Carry today, 82A Syston Street, Leicester, LE12JU and 2A Rowlatt's Hill, Leicester, LE54UN.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Lister, Navratri ni dhammakedar rato mate theja ready. KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026. 11th to 28th October, live from India. Garba, Dandiya, music and a full-on festive vibes. Every night from 7 PM at Avanti Field School, Lister. Tickets just £5 the start. Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 07957-477-330. Radio Partner, like our radio.
9: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: माना तो सारे हसीनों में हसी है पर अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है कॉलेज के दिनों में लड़कियां मुझे देख के सीटी मारा करती थी अब थोड़ा सा खैर

0: बड़े खूबसूरत हैं हम नौजवान, हमें लोग कहते हैं जाने जहां, इसलिए हमने कहा हमको अपना बना लो तो कैसा रहे, अपने दिल में बसा लो तो कैसा रहे, हमको अपना बना लो तो कैसा रहे, अपने दिल में बसा लो तो कैसा रहे, मुस्कुरा करके बोली वो यूनादिनी,
1: भैया राखी बंधा लो तो कैसा रहे, भैया राखी बंधा लो तो कैसा रहे।
0: छोड़िए क्या रखा सच्ची बात।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Yes, you can send money by, but before let me tell you the rates. Today they are giving for £1 in Indian currency 126.94 rupees. Pakistani 365.77 rupees. Sri Lankan 436.81. Aur Bangladeshi Take 162.42. Afghani 85.17. And Mauritian rupees 63.57.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: Well, the gold is trading at the rate of £101.7 per gram.
4: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
0: Vimal Ryan ji, jo geet pasand aaye aap hi ke liye hai, rakh lijiyega. फ्री है गिफ्ट हमारी ओर से ओके। और भारती जी थैंक यू वेरी मच, आपको भी गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, आपको चिंतन भी पसंद आया, वो आपके नाम था। दिनेश पोपट साहब, मुकेश जी का जब भी स्वर बजता है आपका नाम हमारे दिल में सजता है, याद आती है आपकी। और अहीर गुनोवा जी थैंक यू वेरी मच, आपको भी हमारा प्रणाम पहुँचे। गुरुदेव गांजा जी, सो नाइस ऑफ यू। और साहब मानसी आप भी सुन रही हैं मुझे पता है। और भाई हमारे पम्मी सिंह स्लाव में हमारे साथ जुड़े प्रदीप सोलंकी, थैंक यू वेरी मच। सुखी, व्हाई आर यू सो दुखी, आपकी पसंद का गीत नहीं है, चलो कोशिश करते हैं देखते हैं। और इसके अलावा भाई हमारी स्वीटी कालड़ा जी कहती हैं भूल गए वो दिन, आज बातें कर रहे हो कि कफन तैयार है मुर्दा ढूंढ के लाओ, हाँ मुर्दा ढूंढ के। कैफी आजमी साहब ने कहा था, लेकिन कहती है वो दिन याद करो जब हम बराबर शो किया करते थे। रियली भाई पीछे अतीत में झांक कर देखते हैं, अब जैसे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग याद भी आते हैं और हम दिल में ढूंढते हैं तो मिल भी जाते हैं।

0: थैंक यू वेरी मच भाई, बड़ा स्वीट गीत सुनवाया स्वीटी जी आपने, याद दिलाते थैंक यू। और भाई ये हैं हमारे अमीन मोहम्मद साहब किंग्सबरी में, कहते हैं रवि साहब आप ये जो हंसा रहे हो ना, ये सुनकर के मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि आज बुधवार है। भाई बुधवार को ठीक है कि ठहाके गुंजाते हैं हम जोक सुनाते, लेकिन अब दिल करता है कि वो कहावत सही कर दे जो किशोरदा ने कहा है ना,
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: लेकिन भाई हम हंसी वाले वो चटपटे गीत सुनवाते हैं, तो कभी कभी चिंतन में या कुछ गंभीर गीत सुनवाकर आंखों से आंसू भी गिरवाते हैं।

इश्क एक तरफा से ही मसरूर हो जाऊंगा मैं शाम तुम होंगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू तुम न मुझे कुछ देना मैं अगर मांगू तो मांगू कुछ ना तुम देना मुझे वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं वरना एक प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं

मैं अगर रोऊं तो रोऊं तुम अश्रु बिंदु न ढालना आंखों से बिंदु मत गिराना वरना नजरों से तुम्हारी दूर हो जाऊंगा मैं कवि बिंदु की लिखी हुई लाइनें

0: हमने किया था जिनसे बहुत प्यार टूट के वो बन गए हैं देखिए अगियार टूट के वो यार दोस्त सब के सब हैं हो गए विदा चाहा था जिनको हमने कभी यार टूट के चलते चलते कहते हैं चलने की बात क्यों करते हो मिलने की बात करो ना अरे साहब चलेंगे तभी तो मिलेंगे
1: चलते चलते
0: फिर मिलेंगे
1: मेरे
0: हमारी आपकी अगली मुलाकात सोमवार को 10 बजे की खबरों के बाद आपके लिए एक सुपर्ब वीकेंड की कामना करते हुए आपका दोस्त रवि शर्मा अब इजाजत चाहता है

0: Boys.
1: Bali Brumba. Okay, so there is so much to say about the life of Asha Bhosle. I mean, Asha Parekh. I always make that mistake because I've always been very close to Asha Bhosle ji. So, when Asha naam aata hai, to Bhosle saath mein aa hi jata hai. Lekin main koshish karunga next 2 hours, I'm just gonna say Asha Parekh, Asha Parekh, Asha Parekh. Yes, born on 2nd October 1942. She is 84 years young and still looking so ravishing. I'll tell you so many things you don't know about Asha Parekh ji. Ji haan. इन्होंने बचपन में ऑफ कोर्स बेबी आशा पारेख के नाम से शुरुआत की थी. एवरीबॉडी नोज दैट. एंड इनके पिताजी के बारे में बात करेंगे, इनकी माताजी के बारे में बात करेंगे, डैडी का नाम और मम्मी का नाम, एंड देन वी शैल गो फर्दर. लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि देयर वाज वन बिग विलन इन हर लाइफ. एक ऐसा विलन इनकी लाइफ में आया जिसने बहुत दिल दुखाया उनका, उनको परेशान बहुत किया. लेकिन दिस इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ आई वुड से अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. किसी ने इनको दुखी किया एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. कैसे, चलो मैं बताता हूं आपको. अभी आशा पारेख फिल्म्स एज बेबी आशा पारेख. ओके, सो 10 साल की उम्र में बिमल रॉय ने उनको देखा एक स्टेज पे और बड़े प्रभावित हो गए. एंड देन बिमल रॉय वाज कॉल्ड टू बॉम्बे फ्रॉम कोलकाता, तब कैलकाता था. वो बॉम्बे आ गए टू बॉम्बे टॉकीज टू डायरेक्ट अ फिल्म कॉल्ड माँ. जी हाँ, ये फिल्म माँ 1952 की फिल्म, उसमें उन्होंने आशा पारेख को एक बच्ची का रोल दिया था. एंड हर एक रोल जो उनको एज अ चाइल्ड स्टार दिया गया था वाज आल्सो बिकॉज ऑफ हर डांसिंग स्किल्स. बचपन में ही काफ़ी तालीम पाई थी डांसिंग की. नाउ एक साल के बाद वो फिल्म माँ जब डायरेक्ट की, तब बिमल रॉय ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया. और वो प्रोडक्शन हाउस शुरू करते ही इन्होंने एक फिल्म बनाई थी विच वॉज दो बीघा जमीन, विच वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स एवर मेड. एनीवे, 1952 में एट द एज ऑफ 10 आशा पारेख एज आशा बेबी आशा पारेख इन फिल्म माँ. दूसरी फिल्म थी 1952 में दलसुख पंचोली. दलसुख पंचोली नाम याद है आपको? बताता हूं मैं. पायनियर ऑफ फर्स्ट पंजाबी फिल्म एवर डन. एंड ही गॉट 13 ईयर ओल्ड बेबी नूर जहां टू एक्ट एंड सिंग इन अ फिल्म कॉल्ड गुल बकावली, 1939 की फिल्म. नूर जहां, दैट्स राइट, 13 साल की थी वो. दलसुख पंचोली ने उनको फिल्म में डाला था. तो दलसुख पंचोली ने एक फिल्म डायरेक्ट की विच वॉज कॉल्ड आसमान, 1952 की. तब आशा पारेख वॉज 10 ईयर्स ओल्ड. एंड देन व्हेन शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आई वुड से, जिनका नाम था व्रजलाल जगनेश्वर, लेकिन हम उनको एक नाम से पहचानते हैं जो है विजय भट्ट. आपको मालूम है ना विजय भट्ट? नहीं मालूम? मैं बताता हूं. जिन्होंने मीना कुमारी को डिस्कवर किया, माहजबीन बानू को बेबी मीना करके लेदर फेस फिल्म में किरदार दिया. डिस्कवरी ऑफ मीना कुमारी वाज बाय नन अदर देन

0: अभी द होल स्टोरी ऑफ आशा पारेख अमिता विजय भट्ट रिवॉल्व्स अराउंड ऑल द हार्ट एक्स दैट आशा पारेख गॉट. वो आगे जाते हुए मैं आपको बताता रहूंगा. लेकिन गूंज उठी शहनाई में शी वॉज रिजेक्टेड सेइंग शी इज नॉट स्टार मटीरियल. इसके पीछे कौन था? लोगों ने कहा विजय भट्ट ने ये बोला था एंड विजय भट्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल, बट इट वॉजंट विजय भट्ट, देयर वॉज अनदर मैन. हु वॉज ही? आगे जाते हुए मैं आपको बताऊंगा. अब आते हैं 11 साल की आशा पारेख, जिन्होंने 1953 में श्री चैतन्य महाप्रभु में एक्टिंग की. फिर आई 12 साल की उम्र. 12 साल की उम्र में बिमल रॉय ने बाप बेटी फिल्म बनाई 1954 की. वो इतनी अच्छी नहीं रही. वहाँ आशा बेबी आशा पारेख का दिल टूट गया. उसने कहा मैं स्कूल वापस जाऊंगी और तालीम पाकर फिर वापस शायद मैं एक्टिंग के लिए आऊंगी. मीन टाइम दूसरी फिल्में जो की थी वो थी, एक थी धोबी डॉक्टर, दैट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय बिमल रॉय. अगेन बिमल रॉय ने गुजारिश की एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय फानी मजुमदार. 1954 की फिल्म जिसमें किशोर कुमार थे, उषा किरण. सो छोटी ईशा किरण जब फिल्म में दिखाते हैं वो थी आशा पारेख. उसमें जगदीप भी थे. जगदीप का रोल था एज अ बेबी एज वेल, अ बॉय एज वेल, अ लिटिल बॉय हु ग्रू अप टू बिकम अभी भट्टाचार्य इन द फिल्म दैट वॉज धोबी डॉक्टर. तभी 12 साल की उम्र थी आशा पारेख की. और फिर 14 साल की उम्र में अयोध्यापति, दैट वॉज डायरेक्टेड अगेन बाय विजय भट्ट. अभी यही आदमी विजय भट्ट इतने अच्छे चांसेस दे रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु में, अयोध्यापति में, वो क्यों आशा पारेख का काम बिगाड़ेगा? लेकिन वो ही आदमी था जिसने उसको इस फिल्म से निकाला था, गूंज उठी शहनाई, ये कहकर के ये स्टार मटेरियल नहीं है. कुछ दिन शूटिंग चली थी उसके बाद उसको निकाला गया आशा पारेख को. क्यों, कौन था इसके पीछे, मैं बताऊंगा. 14 साल की उम्र में अयोध्यापति, दैट वाज विजय भट्ट. एंड देन 15 साल की उम्र में 1957 में आशा पारेख ने उस्ताद फिल्म में किरदार निभाया. डायरेक्टर वाज धीरूभाई देसाई. अब भी 15 साल की उम्र में 1957 में एक फिल्म थी आशा. आशा में शी जस्ट डिड अ स्मॉल अपीयरेंस, मतलब स्पेशल अपीयरेंस तो नहीं बोलते लेकिन अ स्मॉल अपीयरेंस बाय आशा पारेख. यू नो व्हाई? विच वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, बिकॉज इट गेव हर द अपॉर्चुनिटी टू डांस अलोंगसाइड हर रियल लाइफ आइडल वैजंती माला. दैट्स राइट, फिल्म आशा में वैजंती माला वॉज द हीरोइन. वहां पे एक डांस था, एक गाना था उसमें राधा और कृष्ण का, और कृष्ण का रोल निभाया आशा पारेख ने और राधा का रोल निभाया वैजंती माला ने उस डांस में. डायरेक्टर वॉज एम वी रमन. बस यहाँ पे मैं बात खत्म करता हूँ. आगे हम गाने सुनेंगे एंड देन आई एम गोइंग टू कॉल अ गेस्ट. यू नो 1st of November में रॉयल आल्बर्ट हॉल में देयर इज गोइंग टू बी अ बिग धमाका विद कविता कृष्णमूर्ति एंड उनको लाने वाले हैं सनातन इवेंट्स. उनके एक गेस्ट है, उनको मैं बुलाऊंगा और हम बातें करेंगे. सुनते जाइएगा, मैं हूं बाली ब्रह्म भट्ट. हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड जुड़े रहिएगा ऑन गोल्ड आफ्टरनून्स.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.

And here we go with some stories of Asha Parekh. Ab sabko ye malum to hai ke she started off as baby Asha Parekh and then made her way further up. Ab inke pitaji Bachu Bhai Parekh and inki mataji jinka naam Sudha, lekin real name Salma. She was a Bora Muslim. And she was the one behind Asha Parekh's success. Of course, daddy to backup dete hi the, lekin maa ne usko bheja for classical dancing. The teacher, Pandit Bansilal, Bharati, amongst many others. I know all the names of all the pandits that she'd been to. But if I go into that, to bahut lamba discussion ho jayega. Jaise Bimal Roy ne unko देखा और फिर फिल्म माँ में 1952 की फिल्म जो थी उसमें उन्होंने उनको रखा एंड देन दूसरी जो फिल्म थी बाप बेटी उसमें शी वाज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ द फिल्म फ्लॉप्ड फिर उसके बाद शी फिनिश्ड हर स्कूलिंग मीन टाइम शी जॉइन द एक्टिंग क्लासेस ऑफ सशाधर मुखर्जी ऑफ कोर्स बिग नेम एंड वहाँ पे इनको एक अच्छी सी न्यूज़ मिली थी व्हेन शी वाज डूइंग द स्कूलिंग 16 साल की उम्र में उनको पता चला कि राजेंद्र कुमार की एक फिल्म है गूंज उठी शहनाई जहाँ पे इनको हीरोइन का रोल दिया जाएगा एंड शी वाज सो हैप्पी एंड इलेटेड एंड शी वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड गिविंग एवरीथिंग शी गॉट Because she was, by that time, a very good classically trained actress. And itni filme karke experience bhi mila tha acting ka. Kuch din shooting chali, goonj uthi shehnai ki. Lekin kuch dino ke baad, usko nikala gaya. Asha Parekh ko film se nikal diya gaya. Aur comment aayi ki she is not... स्टार मटेरियल और उसकी जगह रखा गया अमिता को अब एवरीबडी फेल्ट विजय भट्ट वाज वेरी अनफेयर जबकि दो फिल्में एज अ चाइल्ड स्टार इन्होंने की भी थी डायरेक्ट लेकिन ऐसा क्यों किया बाद में तहकीकात करने के बाद पता चला कि द हीरोइन जिसने उसको रिप्लेस किया अमिता उसको चाहने वाला एक बंदा था एज अ प्रोटीजे ही वाज द ओनर ऑफ फिल्मिस्तान स्टूडियोज वो ओनर का नाम था तोलाराम जलान अब तोलाराम

0: प्रोमोट किया बिकॉज ही यूज टू लुक आफ्टर हर वॉर्डरोब ही यूज टू लुक आफ्टर हर मेकअप ही यूज टू लुक आफ्टर हर पब्लिसिटी सो मतलब कुछ तो वहाँ हो रहा था रोमांटिक लेकिन नोबडी कुड पुट अ फिंगर ऑन इट पर पता चलता था कि तुम सा नहीं देखा जो नासिर हुसैन की फिल्म थी एंड सशाधर मुखर्जी दे ऑल हैड एन एक्सपीरियंस गोइंग थ्रू तुम सा नहीं देखा एंड दे डिड नॉट वॉन्ट अमिताभ बैक अगेन आफ्टर दैट एक्सपीरियंस इन तुम सा नहीं देखा लेकिन तोलाराम लगा हुआ था उसने आशा पारेख को निकाल दिया आशा पारेख को उसने निकलवा दिया और विजय भट्ट को कहा कि इसको निकालो बिकॉज ही वॉज द फाइनेंशियर पैसा सब उसी से आता था तोलाराम जलान से तो तोलाराम द ओनर ऑफ फिल्मिस्तान स्टूडियोज वॉज बिहाइंड द होल थिंग के आशा को वहाँ से निकाला शी वॉज सो डिस्ट्रॉट शी वॉज सो अपसेट उसने सोचा कि अब मैं जिंदगी में कभी काम नहीं करूँगी आई विल नेवर एक्ट इन फिल्म बट शी वॉज गोइंग फॉर एक्टिंग क्लासेज एट सशाधर मुखर्जीज और वहाँ से गुल्ली मारती थी लेकिन तकदीर का करना दिस इज द बिगेस्ट केस ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज उसको वहाँ से निकाला उस फिल्म से गूंज उठी शहनाई से निकाला आठ दिन के बाद गुड न्यूज आई आठ दिन के बाद चुना गया दिल देखे देखो विद शम्मी कपूर और दिल देखे देखो 1959 में उसने जब एक्टिंग किया फिल्म वॉज सुपर डुपर हिट इट केम आउट एट द सेम टाइम एज गूंज उठी शहनाई सेम ईयर लेकिन ये फिल्म इतनी चढ़ी गूंज उठी शहनाई वॉज ऑल्सो अ म्यूजिकल हिट और अमिता का भी काम हो गया था लेकिन नॉट एज बिग एज आशा पारेख आशा पारेख को नासिर हुसैन ने जिनके साथ इन्होंने ऑफ कोर्स दैट वाज द लव ऑफ हर लाइफ द ओनली मैन इन हर लाइफ अभी दिल देखे देखो के बाद छह फिल्म में साइन कर दिया जब प्यार किसी से होता है फिर वही दिल लाया हूं फिर तीसरी मंजिल अगेन विद शम्मी कपूर बहारों के सपने फिर शशि कपूर के साथ प्यार का मौसम जितेंद्र के साथ कारवां एंड देन अ कैमियो रोल इन मंजिल मंजिल फिर राज खोसला ने दो बदन में इनका पूरा एक्टिंग चेंज कर दिया एंड बाई गेटिंग हर अ सीरियस रोल विद मनोज कुमार फिर चिराग फिल्म 1969 एंड देन मैं तुलसी तेरे आंगन की राज खोसला की फिल्म शक्ति सामंता ने पगला कहीं का एंड कटी पतंग जहां पे अवार्ड मिला ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस एंड देन उधार का सिंदूर वहां पे नॉमिनेशन मिला था बेस्ट सपोर्ट का 1976 की फिल्म वो थी शक्ति सामंत विजय आनंद ने बहुत फिल्में दी मोहन सेगल ने बहुत फिल्में दी शी डिड गुजराती फिल्म एज वेल तो आशा पारेख को मैं इतना ही कहूंगा नजर ना जाम छलका वी ने चालिया क्या तमे दैट्स राइट गुजराती फिल्में जो की थी दैट वाज ज्योति पलश के फूल देन बाजे पायल टीवी सीरियल्स इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की आकृति जहां पे शी बिकेम द डायरेक्टर ऑफ गुजू सीरियल ज्योति प्रोडक्शन पलश के फूल प्रोड्यूसर ऑफ बाजे पायल प्रोड्यूसर ऑफ कोरा कागज एंड देन अखंड सौभाग्यवती उसमें इन्होंने एक्टिंग जो की थी पंजाबी फिल्म कंकन दे ओले धर्मेंद्र के साथ और दारा सिंह के साथ लंबरदानी एंड शी केप्ट ऑन डूइंग इट लेकिन इस आदमी ने उनको छोड़ा नहीं बाद में भी एक फिल्म जो बनाई देवानंद के साथ वहाँ भी तोलाराम जलान ने काफ़ी मतलब बैड बिहेवियर किया था वो बात कभी और सही लेट्स विश आशा पारेख Happy 84th birthday.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.5 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara Tea Time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango.

0: इस फिल्म के अंदर कारवां फिल्म में इस गाने के अंदर थोड़ा कॉमिकल एक सटायर था और आशा पारेख ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया था कि इसको मैं तो क्लासिकल डांसर और वेस्टर्न में स्पेशलाइज करती थी लेकिन स्टेप से बाहर गलत डांस करना इनको कहा गया था एंड शी फाउंड इट सो डिफिकल्ट टू डू दैट. आप देखना फिल्म में कैसे वो गलत डांसिंग कर रही है, लेकिन दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर बिकॉज शी वॉज एन एक्सपर्ट.
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Like a Radio.
4: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.
0: This is a real treat for you. Sunil Dutt, Asha Parekh, Talat Mahmood and Lata Mangeshkar. Film Chhaya. Beautiful song.

0: एक फिल्म बनी थी ब्लैक बनी के ऊपर और इतनी खूबसूरत फिल्म थी कहीं और चल 1968 की फिल्म. क्या हुआ था कि ज्वेल थीफ जब सक्सेस गई तो इस सक्सेस के ऊपर देवानंद विजयानंद दे गॉट टुगेदर विद द कैमरामैन जाल मिस्त्री एंड दैट वाज हिज डेब्यू वेंचर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फिल्म. और तोलाराम जलान ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, पूरे राइट्स ऑफ द फिल्म, और बोला कि मैं पैसे दूंगा. फिर बाद में शूटिंग शुरू हो गई, ना तो आशा पारेख को कोई पैसा मिला, ना तो किसी को भी पैसा मिला, इसने पैसा देना बंद कर दिया, सब लोग स्टार्व हो गए, कैश स्टार्व्ड फिल्म, एंड जाल मिस्त्री फंस गए बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर. और फिल्म इन्होंने बंद करवा दी तोलाराम जलान ने, जस्ट टू गेट आशा पारेख आउट ऑफ द फिल्म. एंड देन 90% फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, तो भी इन्होंने सारा कुछ बंद करके, ही वॉन्टेड द फिल्म टू फ्लॉप सो दैट ही कैन क्लेम टैक्सेस एंड ऑल दैट बिजनेस. लेकिन बाद में उन्होंने कुछ एग्रीवेशन जब हुई तब कोई डुप्लीकेट स्टार्स को ले आए एंड ही डब्ड एंड सारे डबिंग आर्टिस्ट को चेंज कर दिया और पूरी फिल्म वापस इन्होंने रिलीज कर दी. And obviously it was a huge big flop, but musically quite good. Lekin ye bhi ek petra tha unka against Asha Parekh.
1: Refreshing Asian hits across the Leica Radio Network.
0: Bin Badal Barsaat. Saadhe chhe saal pehle is radio station pe gana sunai diya tha.

0: Leica Radio.
1: Time for another Leica Love Classic.
2: बन गया अच्छा
3: अच्छा जी
2: एक बहाना बन गया अच्छा